रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यू।
4: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
6: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM। हर

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
2: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो।
1: सेबेस्टियन।
2: नो।
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो। एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह या।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे

0: यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाय टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1800-7178 1-800-1800-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है,
1: व्हाट्सएप पे
2: तभी व्हाट्सएप वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-446-4 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: मैं हूँ आरजे सूर।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें।

0: मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
1: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Archie Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दे।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। दोस्तों, रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मस्तार शो व्हाट्सएप। मैं हूँ आपका साथी जाग ज़ूस। दोपहर के 12 बजे तक आप और हम साथ साथ हैं। जी हाँ साथी, आपने भी साथ निभाना है और दिल की धड़कन को जोरों से धड़काना है। फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें रेडियो चुनार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स का। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर जाइए, सर्च कीजिए रेडियो चुनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन। फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ याद रखिए कमेंट्स में प्यार देना।

साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया की किसी भी कोने में। लॉगिन करें www.radiochunar.com पर। और दिल की धड़कन रेडियो चुनार, मैं हूं जॉक्स सिरेट दरगाह।

0: हाय मैं हूँ आरजे सूरज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
4: सब्सक्राइब नाउ।

0: Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update.
3: What is frequency har dil ki dhadkan radio channel 90.4 FM par brother aaj ka weather.
2: Radio Chennai.
3: Weather update. क्या कहता है आज का वेदर आपको ये बताएंगे, आप ये जान पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ याद रखेंगे कि 8899-04904 is the number जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है. जी हाँ, क्या है आज का मौसम का हाल, कतई मासूम या बवाल, चलिए बताते हैं.
2: वेदर अपडेट.
3: आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस. वही अगर हम बात करें तो बादल छाए रहेंगे एंड देयर आर चांसेस कि बादल बरस भी सकते हैं.
2: वेदर अपडेट.
3: ओवरऑल देखें तो इस पार्टली क्लाउडी फॉर टुडे. अभी की बात करें तो यूवी इंडेक्स वीक पर ह्यूमिडिटी 77%, विंड स्पीड 2 किलोमीटर, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर. आज का सनराइज हुआ 5:40 पर और आज का सनसेट होगा 7:37 पर. और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन याद था यू 8899-04904 नंबर इस तो इंदन दिलन वार्चे दिवान सान इन दिलन से. आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज. डीएम करने के लिए इंस्टा पर आइए, सर्च कीजिए ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो. डीएम करके भी आप शो में शामिल हो सकते हैं. जॉक्सूस के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो. सब मेरी जान से रिहक धड़काते रहा.

0: Zeus. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा. वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है हम पहुंचाते हैं आप तक. आइए बात करते हैं एक वीडियो की जो कल सरफेस हुआ वायरल रहा क्योंकि लोगों के कंसर्न्स रेज होते हुए दिखे. सोया चाप प्रिपेयर करते हुए और सोया चाप की जो डो है उसे प्रिपेयर करते हुए एक बंदा आटे पर और डो पर लोटपोट करता हुआ दिख गया. अब जहां आटा या तो मशीन से गूंदा जाता है या तो हाथों से, अब ये बंदा तेल लगाकर आटे पर ही पिसर रहा था और एंजॉय कर रहा था जिसका वीडियो किसी ने ऑनलाइन डाल दिया.

अब लोगों ने कंसर्न जाहिर किया इस बात पर कि भैया हमारी फूड सेफ्टी का क्या, हमारे जो स्ट्रीट फूड्स है कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी इससे इफेक्ट हो जा रही है। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो सर्फेस हुए हैं जहां पर हमें ये देखने को मिला कि लोग सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते और जिसकी वजह से लोगों की सेहत पर आ बनती है। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल सिटी हिट धड़काते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: और दिल की धड़कन रेडियो चिटार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है इट्स नॉट द लेंथ ऑफ लाइफ बट द डेप्थ। और इस फ्रीक्वेंसी पर शो हुआ सब जगजीत के साथ सिरे हट धड़काते रहो।
5: कल बत्ती कमरे की हो जाएगा तो प्यार दो प्यार दो और बेचैन दिल की हो जाए तो प्यार

0: Dios. Dios.
1: कर रहे हैं आप एंजॉय मजेदार शो व्हाट्सएप, मैं हूं आपके साथ ही जैक ज़ियस। व्हाट्सएप शो बोले तो दोपहर के 12 बजे तक 9 बजे से लेकर हम आपके साथ हैं और साथ में हम मिलकर धड़काते हैं इस दिल की धड़कन को, और इसे धड़काया है शुमैला ने। शुमैला हबीब लिखती हैं, सर इस फर्स्ट टाइम मैं मैसेज कर रही हूँ, एक्चुअली आज मन था तो रहा नहीं गया, सोचा आपको बता दूँ। यू आर टीम एंड यू आर डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच शुमैला, गॉड ब्लेस यू, एंड यूं ही प्यार देते रहे, रेडियो चुनार को सुनते रहें, सराहते रहें, क्योंकि सराहते हैं आप तभी तो कोशिशें रंग लाती हैं हमारी। तारिक जावेद हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं तारिक जावेद, सर गजलों का भी एक सेगमेंट होना चाहिए, गजलें जो हैं हम सुनना चाहते हैं। देखिए सुहानी शाम हमारा एक सेगमेंट है जो आप शाम को ही सुन पाते हैं, जाहिर सी बात है, तो उसमें रेट्रोज, गजलें, कवालियाँ, मतलब सब कुछ मिलता है आपको। आप बस शाम के टाइम ट्यून इन करें 7 बजे के बाद से, तो आप सुहानी शाम सुन पाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा वो सेगमेंट भी तारिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं, 8899904904 इज द नंबर। शो वाज़ पर वक्त हो चला है कि आज का टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए। देखिए हर साल होने वाली ये पावन यात्रा जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, अब खूब ही समझा आपने, आज हम बात करने वाले हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के बारे में। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026-2025, और जहां तक हमने बात करी है तो हर साल हम आप तक वीडियो पहुंचाते हैं, और वही अगर हम बात करें तो इस साल भी कई सारे वीडियो श्री अमरनाथ जी यात्रा से रिलेटेड आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख पाएंगे और जान पाएंगे इस पावन यात्रा के बारे में। तो आज का टॉपिक है श्री अमरनाथ जी यात्रा जिसके बारे में बात होगी। अगर आप भी इस पावन यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जानते हैं, कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी लोगों तक पहुंचे, तो ज़रूर 8899904904 है नंबर जिस पर आप कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके या टेक्स्ट मैसेज करके या कॉल करके अपनी बातचीत में रख सकते हैं। हिस्सा बने मजेदार शो व्हाट्सएप का, मैं हूं जॉक्स, आप बने रहें, सुनते रहें हर दिल की धड़कन को।

0: जो खोजे बाहर वो भीतर ही बसे।
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
3: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
3: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: फिर।
1: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
2: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 FM एंजॉय कर रहे हैं आप मस्तार शो व्हाट्सएप शो व्हाट्सएप का हिस्सा बनने के लिए 8888-9904-904 इज द नंबर। आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। व्हाट्सएप शो में आज बात हो रही है श्री अमरनाथ जी यात्रा की। मैं हूं जॉक्सियस, आप बने रहें सुनते रहें हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें और इस फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आप सही है मेरे यार।

0: मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
1: मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर।

0: आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

दोस्तों आप सुन रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप रेडियो चैनल 90.4 एफएम पर। व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश आईपीएल गुड, एक वेस्टर्न म्यूजिकल शो दैट्स टोटली डेडिकेटेड टू द लवर्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक, कुछ ही देर में आप तक पहुंचाएंगे। जरा

सा इंतजार, देते रहे प्यार हर दिल की धड़कन को, धड़काते रहो मेरे यार। जोक्सूस के साथ रेडियो चुनार, सही है मेरे यार।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़।
4: Dead dogs, dead dogs. Dead dogs, dead dogs. Dead dogs, dead dogs.
5: Tech Talks with RJ Zeus.
6: I feel good.
7: Only on Radio Chinar 90.4.
6: I feel good.
7: A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.
8: मैं हूँ RJ Zeus. जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
6: आई फील गुड।
7: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4।
6: आई फील गुड।
7: अ न्यू वाइब फॉर द लवर्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक विद मी आरजे ज्यूस।
2: So friends, here it goes, a journey for the lovers of Western music. I welcome you all to this beautiful show. Every Tuesdays and Fridays, we get to you. It's a show dedicated to the lovers of Western music. I'm Chuck Seuss and this is I Feel Good.

Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.

आपने बुलाया और ऐसा हो सकता है कि आपके बुलाने पे मैं ना हूँ। तो बुलाया आपने, मैं चली आई आपके गली बराबर 2 बजे तक।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

जी हाँ, हेलो जी हेलो, ये है बीट्स ऑन रिपीट, यानी कि शो टुनार बीट्स। और क्या कुछ नहीं यार, ये बीट्स ऑन रिपीट है, बहुत कुछ है, बातें हैं, जज्बात है, हालात है, ख्यालात है, हाय हाय, मजा ही मजा है। देखिए, मौज और मजा, ये तो एक ऐसी चीज़ है ना कि भैया जी मिल जाए तो लाइफ बल्ले बल्ले, और नहीं मिल जाए तो क्या बात है कि ये तो हमारी बात है, हमारे जज्बात ही नहीं मिल रहे। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरी पूरी वाइब और ट्राइब जिसमें जज्बात भी मिले, हालात मिले और ख्यालात, वो तो मिल चुके हैं। अब देखिए, एंटरटेनमेंट तो है ही, और एंटरटेनमेंट के अलावा हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ट्राई करते हैं कि आप तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और कोई भी ऐसी खबर आपको ऐसा लगे कि देखिए रेडियो चुनार की हम पूरी ट्राइब है और वाइब से थोड़ा दूर रहे, वो हम नहीं कर रहे भैया। अब आप है, मैं हम मौका दस्तूर है, और बताइए, चलिए वाइब को ट्राइब के साथ मिला लेते हैं। और क्या कुछ है वो तो मैं आपको बताऊंगी, अभी तो बस शुरुआत हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब एक नंबर भी है जो काफ़ी ख़ास है, एंड आई नो हमारे जो रेगुलर लिसनर्स हैं उन्होंने तो मेमोराइज किया होगा, बट मैं फिर से बता रही हूँ, इट्स 8899904904। टेक्स्ट व्हाट्सएप करके आप शो में शामिल हो सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या आखिर चला है। मैं तो थोड़े कॉल ही हैं, और साथ में कॉल हमारे बैक टू बैक सॉन्ग्स भी है। नहीं, ये सॉन्ग क्या पूरी पलटन ही है, यहाँ के बैक टू बैक सॉन्ग्स दैट विदाउट एनी एलियन गेट फ्री म्यूजिक का वादा देता है रेडियो चुनार भरपूर। और सबसे ज्यादा आप सुन रहे हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, रेडियो चुनार 90.4 FM।

सा रुपीत शो चुनाव बीच सब एंजॉय कर रहे ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम दे सारी बातें हो रही हैं वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी हाँ नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट्स स्टिल क्लोज फॉर वहीक्युलर ट्रैफिक ड्यू टू मैसिव लैंडस्लाइड्स एंड शूटिंग स्टोन्स अगर हम बात करें तो लैंडस्लाइड्स की वजह से अभी भी रोड यानी कि आप जम्मू से श्रीनगर श्रीनगर से जम्मू नहीं आ सकते हैं नहीं जा सकते हैं बिकॉज अभी भी जो रास्ता है वो अभी मेनटेन नहीं किया गया है और अभी भी उस पर काम चल रहा है सो उस रोड पर आप अभी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और उसके अलावा वी हैव टू बी वेरी कॉशियस जब हम ट्रैवल करते हैं इन जगहों पे बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि जो एडवाइजरी दी गई है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हमारे लिए वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है तो जब भी हम सोचें कि हमने नेशनल हाईवे से ट्रैवल करना है स्पेशली श्रीनगर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से ट्रैवल करना है सो ज़रूरी है कि हम देखें कि हमें वन वे ट्रैफिक आज है या टू वे ट्रैफिक या फिर अभी भी रास्ता बंद है सो इन चीज़ों से हमें काफ़ी ज़्यादा खबर मिलती है और ज़रूरी है हम समझें कि ट्रैफिक पुलिस हमारे लिए काम करती है ग्रीन सिग्नल्स आएंगे तभी हम ट्रैवल कर सकते हैं और ज़रूरी ये भी है कि उनकी ही ड्यूटी नहीं है ये हमारी भी जिम्मेदारी है इसे हमने निभाना है सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना ये हम सबको ही पता है बट पता नहीं क्यों कभी कभार हम जानबूझकर या फिर जान के अनजान बन जाते हैं और फिर हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है वो तो नहीं करना है बस थोड़ा दिमाग को सही रखना है हमें पता होना चाहिए कि हमारे कंधों पर एक जिम्मेदारी उसे निभाना है एंड नेसेसरी है कि गलत जगह पे ओवरटेक नहीं करने का बस क्योंकि भाई है कि फिर हम कूल बनने के चक्कर में फूल बन जाते हैं और वैसा तो नहीं करना है हमने हमेशा जीरो वाले देखें बल्कि हीरो वाले काम करने

पंजाबियों की बैटरी नहीं, हम सब की बैटरी, हमारा दिमाग जो ना सही रहना चाहिए, चार्ज रहना चाहिए, तभी हम सही से ट्रैवल कर सकते हैं। पता होना चाहिए कि हम एक पॉजिटिव मैसेज देकर बहुत सारी चेंज ला सकते हैं अपनी सोसाइटी में। फिलहाल के लिए आपका क्या है इस पर ओपिनियन? 8899904904 पर कॉल, टेक्स, व्हाट्सएप कीजिए। शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाइए।

Chinar Beats ve Dhar Chediva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Ve Darcet.
1: Diva.
0: Kabaran.
2: जी हाँ, खबर ऑनलाइन लेकर मैं हूँ हाजिर। तुम्हें बहुत ही खबर विस्तार सोन खबर छिक्या और किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मारे से तो कोई गलती नहीं होवे है, मैं तो बराबर 12 बजे आई हूँ आपसे बात करने के लिए। बट ये सॉन्ग जो है ना आजकल काफी ट्रेंडिंग है, क्योंकि कल इसका 2.0 यानी कि नया वर्जन आया है। वर्जन क्या, थोड़ा रिमेक किया गया है सॉन्ग को, थोड़ा सा डिफरेंट, बस ये कह सकते हैं कि एक्ट्रेस डिफरेंट है, डांस मूव्स डिफरेंट है, बट लोग कह रहे हैं सत्यानाश हो गया है ट्रैक का।
1: स्वागत है आज की ताजा न्यूज़ में। हम
2: क्योंकि लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं जो भी नया ये बनाया गया है सॉन्ग का 2.0 वर्जन आया। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग, वो कहते हैं ना अच्छे खासी चीज़ को बिगाड़ क्यों देते हैं। ये लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, ओल्ड इज गोल्ड, और कोई भी पहले वाले सॉन्ग को मैच नहीं कर सकता।
0: खबर
2: अब इस पे ट्रोल तो हो रही है माहिरा शर्मा साथ में तनिष्क बागची, और बताया जा रहा है वही जो आप हमेशा करते आए हैं सॉन्ग्स को बर्बाद, यही भी बर्बादी हो चुका है। लेकिन क्या आपको पसंद आया सॉन्ग, आपने सुना राणा जी 2.0, मुझे बताए शो कैसे बन जाए। आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं 8999-0904 टेक्स्ट व्हाट्सएप करके। आप सुन रहे हॉटस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हो ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे एंड व्हाई वी हैव टू कंजर्व आवर नेचर एंड क्या चीज़ें हैं जो हमने मिलके करनी पड़ती है. वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टूवर्ड्स आवर फैमिली टूवर्ड्स सोसाइटी, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑलमाइटी की तरफ से हमारे लिए बेशुमार है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस नियामत को, वो कहते ना कि ज़ाया करते जाएंगे और ये भूल जाएंगे कि कहीं ये नियामत तो हमसे दूर ना हो जाए. सो आज हम शो पे बात करेंगे कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग इट, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, थीम क्या है इस साल का और कहाँ कहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अपने नेचर को बचाइए अपने आने वाले जनरेशन के लिए, अपने लिए, ताकि हम नेचर को समझ सकें, हम नेचर को बचा सकें. 8-8-9-0-4-9-0-4 आप कॉल टेक्स व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं. आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, रेडियो चुनाव 90.4 FM.

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं।

ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्यूनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा पर

फॉर्मेट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: देखिए दिल हद से पार होना चाहता है और भी बातें करना चाहता है, लेकिन शो चुनाव बीच का तकाजा है, वक्त का तकाजा है कि हम आपसे इजाज़त लें, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट आज शो पे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, जहाँ पर आज बात हुई कि हमने कैसे हेल्प करना है अपने नेचर को, हमने कैसे हेल्प करना है जो हमने प्लान करने हैं ट्रीज, सो दैट हमें एक फ्रेश एयर मिले, हमें अपने वाटर को बचाना है, हमने वेस्ट को रिड्यूस करना है, सो एवरीथिंग वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमें पता है, बट पता नहीं क्यों हम भूल जाते हैं इस बात को।
1: कसम से
0: मैं भी कह रही हूँ कि अगर हम आज कोई स्टेप ना ले तो आगे जाके हमें बहुत पछताना पड़ेगा, सो वो पछताना ना पड़े, हम बचा सके अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, अपने नेचर को, तो उसके लिए हमने एफर्ट्स डालने हैं, हमने एफर्ट्स को बढ़ाना है, ट्राई करना है कि हम सही करें अपने मदर नेचर के साथ। तो फिलहाल के लिए शो चुनार बीच ख़त्म हो चुका है और आज पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, आज 28 जुलाई है, और टॉपिक तो ख़त्म हो गया, बट स्टिल अगर आप कुछ कहना चाहते हैं और अपना फेवरेट ट्रैक सुनना चाहते हैं तो बस वही है 8899904904 नंबर है जिस पे आप अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं, आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं, तो जल्दी कीजिए, शो का हिस्सा बन जाइए 8899904904, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1800-7178 1-800-1800-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

मैं तो कहीं नहीं जा रही, बराबर चार तक मैं यही हूँ। शो कुछ देर पहले शुरू हुआ है और अभी हम बात करने जा रहे हैं रेलवे अपडेट्स के बारे में। और आज की अपडेट यही है कि जो भी लोकल ट्रेन्स हैं वो एज पर द शेड्यूल है एंड यू कैन गेट द समर टाइम टेबल थ्रू द ऑफिशियल इंडियन रेलवे एप्स, दैट इज रेल वन। सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। मैं बस यूं का योर यूं वापस आई।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दल की धड़कन। शो है हंगामा एंड दिस इज द टाइम फॉर 1 मिनट फैक्ट। और 1 मिनट में एक ऐसा फैक्ट जो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, एक ऐसी चीज़ जो आपकी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ आप नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ आप नया जान पाते हैं नई चीज़ों के बारे में। एंड टुडे इट्स अबाउट म्यूजिक। जब हम गाने सुनते हैं, जब हम कोई भी ट्रैक ऐसा सुनते हैं जो हमारे इमोशंस के साथ रिलेट होता है, कहीं ना कहीं हम ऐसा महसूस करते हैं, तो हम वो फेक सिनेरियो बनाने लगते हैं, वो डे ड्रीम करने लगते हैं या इमेजिनेशन का काम से काम लेकर हम खुद को उस कैरेक्टर में महसूस करते हैं। समहाउ व्हेन यू विन इन योर ब्रेन यू एक्चुअली फील गुड। और हो सकता है कि बहुत बार आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया हो और ना, दैट्स टोटली फाइन। कभी कभी हमें लगता है कि भाई मैं ऐसा क्यों करता हूँ, बट ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही हाईली क्रिएटिव इंसान की एक बहुत इम्पॉर्टेंट निशानी है। Enjoy कीजिए back to back tracks only on Radio Sunar 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: करो हंगामा आजे असरा के साथ
4: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Welcome back to Show Hangama, only on Radio Sunar 90.4 FM. देखिए, हमारी गाड़ी तो चल पड़ी है 2 बजे और अभी वक्त है कि हम बात करें कि आज का क्या टॉपिक है, आज हम किस बारे में बात करेंगे, क्या ऐसी चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंस है. बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं और हो चुकी हैं और कुछ फिनोमेनाज ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है. और आज एक ऐसा ही, आई वुड से, एक सोशल स्ट्रक्चर है, एक सोशल, एक सोसाइटल प्रेशर है लोगों पर, उसके बारे में बात करेंगे. और वो सोसाइटल प्रेशर क्या है, वो ये है कि लोग क्या सोचेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे. अब हम वो सोचेंगे कि वो लोग क्या सोचेंगे, तो वो लोग क्या सोचेंगे. देखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वैसा ही ये कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, या हमारे घर पे अगर कुछ लोग हैं वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे, या टू बी वेरी ऑनेस्ट, फैमिली कभी कभी अगर आपको जज करे या आपको कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स दे, वो आपके भले के लिए होता है. बट जो बाकी लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, दुनिया के लोग हैं, तो हम इनके बारे में क्यों सोचते हैं. इसी बारे में आज बात होगी कि एक्चुअली व्हाट इज द रूट कॉज इफ समबडी इज सो कॉशियस ऑफ जजमेंट, द फेयर ऑफ जजमेंट, कि लोग क्या बोलेंगे. मैं उस तरह से खुद को एक मोल्ड में बदल दूं ताकि मैं उसी हिसाब से अपनी जिंदगी जीऊं. एंड डेफिनेटली अगर आप मुझे जानते हैं तो मेरा भी यही कहना है और लोगों का भी यही कहना है, और एक्चुअली समझदार लोगों का ये कहना है कि हमें लोगों के लिए जीना इज़ नॉट द थिंग दैट वी शुड डू, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है. इस पूरी ज़िंदगी में अगर खुद के लिए नहीं जिया तो क्या जिया है. और आज हम इसी, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए, और हमारे जो पेरेंट्स हैं खासकर, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं कि लुक क्या बनन, मैं क्या बनन रिश्तेदार, मिश्ते मन पगत जवाब दून. बट उस जवाब के लिए आप अपने लाइफ चॉइसेस को अल्टर कर रहे हैं, अपने बच्चों को फोर्स कर रहे हैं पर्टिकुलर करियर के लिए. बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, बिकॉज दिस इज़ अ सोसाइटल कॉज, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे. मैं हूँ आसरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. देखिए, दिल की धड़कन है, बट हमारी एक जिम्मेदारी है आप के लिए कि देखिए, इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होता है, बैक टू बैक ट्रैक्स होते हैं. सो दिस ट्रैक फॉर यू, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ट्रैक्स दैट यू नो एम्प्लीफाइज द नोशन ऑफ टू लिव रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ. सो आज हम उस पर भी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें. सो स्टे ट्यून्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इट्स हॉट.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: लगती है। वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Jeremy. Chinar Beats with Harshit Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मांग लेना, मोटरसाइकिल ले।
3: दिला दीजिए ना।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1800-7178 1-800-1800-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो भारत। सब्सक्राइब नाउ।
2: खादिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मस्तन सुनो।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Archie Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं।

0: हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्प

हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: Oh, मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मांग लेना, मोटरसाइकिल ले।
3: दिला दीजिए ना।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए

0: अभी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम। रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चनौर से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
0: हम है टीम रेडियो चनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर, मगर, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात, एक बात, लेकिन एक बात

زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر.

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।
1: हाँ,

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूं, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहां तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुद्धन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

Ah.

0: के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

0: याने याने याने प्यार हो गया
1: ओ मनु तेरा हुआ।

मैंने खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ना यूं ही साथी
1: है बंधी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।